0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: एया

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विन्यो और रेडियो ईटी विन्यो ईबीबी काई और रेडियो के कैन पियोम चुन के रेवर क्वारो बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरोटा
1: ईटी विन्यो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान विजुगो
1: मार मैं पाचू इटी विनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो और रेडियो
0: और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो
2: डम डम नुआसे डम अफिनुआसे डॉक्टर एजी सिंह से
3: जाने पुलिस

0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो

0: तुम ये करे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विनो और रेडियो
2: Soldiers bust the road, soldiers, aka Kang Boy in town, alongside Mr. Digga Digga.